गजानन कुलकर्णी ने रची यह भक्ति रचना समूह स्वर में अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे रविंद्र खासनेस। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं प्रभाकर कारेकर के स्वर में ये भक्ति रचना।

गवा कर कार्य करने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग रामकेली पर गिटार वादन. आज के हमारे कलाकार हैं देवोतोष दे. तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण राय. तो चलिए सुनते हैं रामकेली राग पर आधारित गिटार वादन. कलाकार हैं देवोतोष दे.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. लिसन फर्स्ट टू अ गिटार रिसाइटल इन द राग रामकेली. आवर आर्टिस्ट इज देवोतोष दे. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy. Listen now to the rag Ramkeli on the guitar. Our artist, Debotosh Deh.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे राग रामकेली में गिटार वादन। कलाकार थे देवोतोष दे। तबले पर संगत कर रहे थे तरुण राय। ये है रागम 2400 घंटे सातों

0: दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नट भैरव राग में एस राजवादन। आज के हमारे कलाकार हैं अनुजीत राय चौधरी, तबले पर संगत कर रहे हैं मधुसूदन बर्मन। तो आइए सुनते हैं राग नट भैरव में एस राजवादन, कलाकार हैं अनुजीत राय चौधरी।
1: You were listening to a guitar recital in the rag Ramkeli. Our artist was Debotosh Day. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a recital on the Esraj. Listen to the Esraj in the rag Nat Bhairav. Our artist is Anujit Roy Chaudhuri. Accompanying our artist on the tabla is Madhusudan Barman. Listen now to the rag Nat Bhairav on the Esraj. Our artist, Anujit Roy Chaudhuri.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे राग नट भैरव में एस राजवादन, कलाकार थे अनुजीत राय चौधरी। तबले पर इनका साथ निभा रहे थे मधुसूदन बर्मन। ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a recital on the Esraj in the Rag Nat Bhairav. Our artist was Anujit Roy Chaudhary. Accompanying him on the tabla was Madhusudan Barman. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है वीणा मुरडुर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग विभास सुनते हैं। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है ए हो नरहर नारायण, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है छांडो कृष्ण जुगल बैया। सात संगत तबला सचिन राजोपाध्ये, हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे।

रहे थे वीणा मुरडुर दा प्रस्तुत राग बिभास। आपके साथ तबले पर थे सचिन राजोपाध्य, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं वीणा मुरडुर द्वारा प्रस्तुत राग भीम पलास। विलंबित छपताल में निबद्ध रचना के बोल है सो ही रसना जोगी, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है वीरज में धूम मचायो श्याम। आपके साथ तबले पर है सचिन राजोपाध्य, हारमोनियम पर है उपेंद्र सहस्रबुद्धे।

थे वीणा मुरडू द्वारा प्रस्तुत राग भीम पलास। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सचिन राजोपाध्ये। हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है कमाल सरवर साबरी का सारंगी पर बजाया राग मालकोंस. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है गुलाम सरवर ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ सारंगी रिसाइटल कमाल सरवर साबरी. ही बिगिंस हिज रिसाइटल विद राग मालकोंस. द विलंबित एंड द्रुतगत आर सेट टू तीन ताल. कमाल सरवर साबरी हैज बीन अकंपनीड ऑन द तबला बाय गुलाम सरवर.

0: कमाल सरवर साबरी का सारंगी पर बजाया राग रागेश्री मध्य लयगत झपताल में और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है गुलाम सरवर ने।
1: नाउ लिसन टू राग रागेश्री परफॉर्म्ड बाय कमाल सरवर साबरी। द मध्य लय गत इज सेट टू झपताल एंड द द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल। इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय गुलाम सरवर।

0: अभी आप कमाल सरवर साबरी का सारंगी पर बजाया राग रागेश्री सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी गुलाम सरवर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू राग रागेश्री ऑन द सारंगी बाय कमाल सरवर साबरी। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय गुलाम सरवर। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं जलतरंग वादन, कलाकार है मिलिंद तुलणकर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग मधुकंस सुनते हैं। आलाप जोड़ और झाला मध्यलय रूपक में है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है गणेश तानवड़े और ये सुनते हैं मिलिंद तुलणकर द्वारा प्रस्तुत जलतरंग पर राग मधुकंस।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे जलतरंग पर राग मधु कंस। कलाकार थे मिलिंद तुलणकर। आपके साथ तबले पर थे गणेश तानव। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मिलिंद तुलणकर द्वारा प्रस्तुत जलतरंग पर राग भूपाल तोड़ी। आलाप जोड़ और झाला विलंबित मत्त ताल में निबद्ध है और द्रुतक तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है गणेश तानवड़े। तो आइए सुनते हैं मिलिंद तुलणकर द्वारा प्रस्तुत जलतरंग पर राग भूपाल तोड़ी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जलतरंग पर राग भूपाल तोड़ी। कलाकार थे मिलिंद तुलणकर। आपके साथ तबले पर थे गणेश तानवड़े। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग शंकर पर सितार वादन सुनाएंगे. कलाकार हैं पंडित देवो प्रसाद चक्रवर्ती. आपके साथ तबले पर हैं अरूप चट्टोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग शंकर पर सितार वादन. कलाकार हैं पंडित देवो प्रसाद चक्रवर्ती.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani instrumental recitals. Listen first to a sitar recital in the rag Shankar. Our artist is Pandit Devo Prasad Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla is Arup Chattopadhyay. Listen now to the sitar in the rag Shankar. Our artist Pandit Devo Prasad Chakraborty.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग शंकर पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित देवो प्रसाद चक्रवर्ती, आपके साथ तबले पर थे अरूप चट्टोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी हम आपको झाप ताल पर तबला वादन सुनवाएंगे। कलाकार हैं देवोजीत पतितुंडी, आपके साथ हारमोनियम पर है हिरणमय मित्रा। तो लीजिए प्रस्तुत है झाप ताल पर तबला वादन, कलाकार हैं देवोजीत पतितुंडी।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Shankar. Our artist was Pandit Devo Prasad Chakraborty. Accompanying him on the tabla was Arup Chattopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to a tabla recital in Chaptal. Our artist is Deepjeet Patitundi. Accompanying him on the harmonium is Hiranmoy Mitro. Listen now to the tabla in Chaptal. Our artist, Deepjeet Patitundi.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप झाप ताल पर तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे देवोजीत पति टुंडी, आपके साथ हारमोनियम पर थे हिरणमय मित्रा। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Jhaptal. Our artist was Debjit Patitundi. Accompanying him on the harmonium was Hiranmoy Mitro. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: रूसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Sri Ojas Adia. With this tonight, we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai, and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

अभी आप सुन रहे थे सितार पर राग बसंत मुखारी, कलाकार थे पंडित गिरिराज। ये है रागम डीटीएच पर हर दम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग रागेश्री, जिसमें आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गतें होंगी तीन ताल में। That was राग बसंत मुखारी। You are listening to Hindustani Sitar Recital by Pandit Giriraj. This is Ragam, 24/7 DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, now the artist renders Rag Rageshree.

ये था राग रागेश्री। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित गिरिराज। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर दम हर समय डीटीएच रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज। द अकंपनिंग आर्टिस्ट वॉज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विनोद कुमार द्विवेदी का ध्रुपद गायन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग भटियार में ध्रुपद. पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित राजकुमार झा.

अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग भटियार में ध्रुपद। अब प्रस्तुत है इन्हीं का गाया राग दरबारी में ध्रुपद। पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित राजकुमार झा।

अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग दरबारी में ध्रुपद। विनोद कुमार द्विवेदी अपने कार्यक्रम का समापन राग किरवानी में गाए ध्रुपद से कर रहे हैं। पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित राजकुमार झा।

अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग किरवानी में ध्रुपद। पखावज पर संगत कर रहे थे पंडित राजकुमार झा। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत बुखारी. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनीबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है सुखमय बैनर्जी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio Delhi. We now present for you a sarod recital by Swapnamay Banerjee. Accompaniment on the tabla is provided by Sukhmay Banerjee. Listen to Rag Basant Mukhi, in which you will hear the alap followed by the vilambit and drutgat set to Teen Taal.

0: अभी आप स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी सुखमय बैनर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वाज राग बसंत मुखारी एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय स्वप्नमय बैनर्जी। अकंपनीमेंट ऑन द तबला वाज प्रोवाइडेड बाय सुखमय बैनर्जी। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का DTH चैनल रागम. आइए सुने भक्ति संगीत. हर रूप में छिपे हैं. आइए अब सुने RP शुक्ला की रचना विवेक प्रकाश की आवाज में.